मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रकृति का हर कण हमें मेहनत, आशा और उत्साह का संदेश देता है। हमें भी जीवन में उमंग बनाए रखनी चाहिए।

जीवन में खुशियां बांटते चलें, क्योंकि अपनी खुशबू से ही फूल सबका मन जीत लेते हैं। हर नया दिन एक फूल की तरह खिलने और दूसरों के जीवन में आनंद भरने का अवसर है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में। तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से फिर से अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट बना लिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज नियरली 12,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई। In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में दूसरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर।
0: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions this Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर डालते हैं सरबजीत। देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते एफपीआई का। लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने जुलाई में लिवाली की है। इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है, लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआई ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफआईआर के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
0: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी,
3: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम
1: जी, सवाल पूछे
3: जी। मैं चाहती हूँ कि जो पीपीएफ होता है ना, पीपीएफ में निवेश बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक का कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में पीपीएफ खोला, वो कितना सुरक्षित है?
1: पीपीएफ में पैसा कितना सुरक्षित है?
2: कांता जी, पीपीएफ क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ये काफी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस टोटल ब्याज है जो मिलता रहता है। तो

0: तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उनसे काफी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं।
1: जी स्नेहा, पीपीएफ की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और खासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फायदे दिखते थे, अब बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
0: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है तो वो पैसे
1: तो रहेगा ही,
0: रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है। और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाहते होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है तो गारंटी से हमें काफी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
1: जी अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से, अमित स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड अर्निंग एज अ सैलरी इनकम एंड मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन, सो आई हैव ट्रांसफर्ड माय म्यूचुअल फंड्स टू माय मदर एंड व्हेन आई एम फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न बोथ फॉर माइसेल्फ फॉर माय मदर, सो इज शोइंग लाइक ऑफ अराउंड 10 लैक्स एंड अंडर द like the off market transaction credit in EIS and GIS statements. So I want to know whether how this tax whether I have to pay tax or how the tax calculation will be done while filing this return for me and for my mother, like I transferred the mutual funds.
1: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद, सौरभ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
3: गुड इवनिंग,
4: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क that let's say on 1st of August I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my let's say asset the small stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing or should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
0: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing, let's think it just for the rebalancing aspect, how the other way of looking at it would be increasing your debt allocation to some extent, and yeah, that should be helpful.
1: जी अगले कॉलर के पास चले सरबजीत
3: जी। चेन्नई काशीनाथ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप और दो फ्लेक्सी कैप प्लांट फ्लेक्सी कैप, और तीनों में 2000 जा रहा है, ये क्या अच्छा है, ये थोड़ा जानकारी चाहिए।
0: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड और एक फ्लेक्सी कैप में, इस लिहाज से मुझे लगता है स्मॉल एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रह सकता है।

0: सब इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा ज्यादा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप जो फॉल होती है वो काफी ज्यादा होती है. तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें, ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए. बस इतना इंश्योर करना कि जब उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में तब आप डरे नहीं, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यूड रखें, क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको रिटर्न आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है. तो आप देखिए अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए.
1: जी, दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं. आकाश स्वागत है आपका, सवाल पूछें. लगता आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है. अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत.
2: यस, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद. सुभाष जी सवाल पूछें.
3: हाँ नमस्कार सर.
2: जी नमस्कार
3: मैडम. अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या, जैसे टैक्स फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था, ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है? और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये कुछ पता चल सकता है?
1: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है, उन्होंने भारत के शेयर बाजार में निवेश किया है, और डेट फंड में भी नहीं है, वो डेट मार्केट में है, वो भारत के पूंजी बाजार का ही हिस्सा है. तो मुझे लगता है ये जवाब काफी होगा हमारे श्रोता के लिए.
2: काश फ्रॉम दिल्ली.
1: जी आकाश.
3: मुझे दो बातें पूछनी है. एक तो ये पूछना है कि जैसे रिजर्व के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो उसमें एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अपने ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे, और क्योंकि हम लोग की एफडी है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा एफडी के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है, या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाए, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मेच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा. कंपाउंड ब्याज तो वो समझे ना, चक्रवृद्धि ब्याज या इसके ऊपर ब्याज. और ये साथ में ये बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, आप लोग कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहाँ आप लोग आम आदमी फ्यूचर फंड में जाना चाहता है, आपसे लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है. धन्यवाद.
0: आकाश जी आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस. आप कह रहे हो अपनी ही कंपनी के फंड सजेस्ट.
1: जी ऐसा अक्सर होता है.
0: हाँ बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए. जब आपको आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड देखना चाहेंगे, तो आप उनमें माफ कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं, एक साल में कोई अच्छा नहीं, लॉन्ग टर्म जनरेशन वेल्थ जनरेशन के लिए. अगर आपका गोल 3 साल के लिए तो हम डेट फंड देखेंगे. अगर आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड देखेंगे. इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस. जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने कि वो से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपकी आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए. और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप

0: एएमसीज की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा, जो आपने बोला कि एफडी एक साल की लेनी चाहिए या ज्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप कर रहे हैं, गोल है, आप उतने समय के लिए वो टेन्योर एफडी लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो, मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है आप, और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहां पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे लगता है कि गोल के साथ हम अपनी इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है।
1: अगले कॉलर है दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, मैं
1: दिनेश
2: कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस एनएवी में ऐड कर सके। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में से किसमें इन्वेस्ट
0: वाले, ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है। और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पे मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले। बट इससे अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पे कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है। एमसीज ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या पे क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि दिनेश जी, सुना है रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है। एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि बट पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारा नजरिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे, आप बिल्कुल उसमें अपनी एसआईपी पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए। बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए। और दूसरा, जो आपका क्वेश्चन था कि ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस ETF ज्यादा पुराने हैं और ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं। बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद बेटर निवेश वो रह सकता है, मेटल ज्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का।
3: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, योगेश जी सवाल पूछे।
4: जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि आईसीआईसीआई क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैसे डाले थे उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले डाल सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है, तो ऐसा क्यों होता है? फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए फंड।
0: योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में

0: मतलब एक एग्जिट रोड की काफी जरूरत थी, क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल माध्यम, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के में बहुत ज्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद निकलता वापस आ जाता है. तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पे इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं, तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उनपे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए. तो चीजों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने पे लगता है तो वहां पे खर्चा ज्यादा लगता है. बाकी आपने यही नोटिस करा है कि डेट फंड्स, बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहां अप्लाई होता है. जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है, लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली. तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फायदा रहेगा.
1: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, डॉलर ट्रेजरी में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों कि अगर ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा. एमसीएक्स में अगस्त बंद के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,006 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रूपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 ट्रॉय आउंस पर बंद हुई.
0: मैं योगेश जी को एक चीज भी बताना चाहूंगी. ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीजन था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं. तो ये भी एक रीजन था.
2: ऑल राइट, टू नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर, जितेंद्र जी सवाल पूछे.
3: हाँ मैडम, सवाल है, जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये है. दूसरा प्रश्न है कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था. तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
0: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आया है मार्केट डाउन है नीचे से स्टार्ट होगा इसमें करना, आपको ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ ऐसी कि कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए. दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक ये जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए. ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है कोई ये जो नया है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता. एसआईपी के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में.
1: जी, अगले कॉलर है भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
4: नमस्ते मैडम, नमस्ते मार्केट मद्रा. मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फिक्स्ड कैप, तो क्या वुड यू एडवाइज फॉर करंट एसआईपी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म?

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 6 सेकेंड और ये वक्त है आप अपने प्रोग्राम गीत मेरे मन गीत का। नमस्कार, संगीत के इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से इस्तकबाल है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त के गर्द से कभी धुंधले नहीं पड़ते, पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन उनके सुर, उनके अल्फाज और उनकी खुशबू हमेशा दिलों में बसी रहती हैं। ऐसे ही सदाबहार और गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, आपके साथ फेरोज। तो आइए आज की इस सफर का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत उनके नगमे के साथ। साल 1956 में फिल्म चोरी चोरी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए और उन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत गीत है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस खूबसूरत युगल गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है मन्ना डे साहब और लता जी ने। गीत के दिल को छू लेने वाले अल्फाज यानी गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है कालजयी धुन तैयार किया है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है, ना कोई बनावट ना कोई शोर, बस चांदनी रात, दो धड़कते दिल और मोहब्बत का एक मासूम सा पैगाम। यही वजह है कि 7 दशक बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। मन्ना डे की गहराई और लता मंगेशकर की कोमल आवाज जब एक साथ मिलती है तो हर अंतरा एक खूबसूरत गुफ्तगू बन जाता है। वहीं संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की शायरी इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि सुनहरे दौर की एक अनमोल याद बना देते हैं।

बचपन अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के चैनल और प्रसार ऐप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 1.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दिल के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो हमारे दिल के आपके दिल के बेहद करीब। कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता ही बनता, जैसे दो प्यारे अपने से पूरी फिजा को जगमगा। मोहब्बत का ये बरसों से की ये शान भी बना हुआ है, हिंदी सिनेमा के संगीत महफिल की ये शान भी बना हुआ है नगमा।

0: فہم کوہنور کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے گیت میرے منمیت سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گی منجو. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष. संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं. सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की. संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया.
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले. इसलिए मैं फिर से पार्टी के नेताओं

0: हूँ करें, और हम विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुनेंगे।
1: किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या व्यक्तियों के जमा प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,00,000 परिवहन किया गया जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। गृह मंत्रालय ने शून्य कोयला लीकेज हासिल करने, देश के कोयला संसाधनों से अवैध रूप से कोयला निकालने और चोरी तथा डकैती पर अंकुश लगाने, देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों को रक्षा, सामाजिक सुरक्षा तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख के रूप में लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी में करीब बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता है। मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ और भूस्खलन के आने पर हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक मैच में 27 रन से 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। अमेरिकी सेना ने कल ईरान पर हवाई हमले किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन से अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज पिछले विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला भारतीय खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं उन्हें और अच्छे से के लिए अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए उस विषय को और जान थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय

0: प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, प्रचलित कर रहा है, और किस तरह लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षार्थ की और साथ ही आधुनिक
1: टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े हैं, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी विश्वविद्यालय में भारत भाग्य गढ़ रही है। दो साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये बात संवाद मंथन की एक अनुशासित है। अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा। अन्य देशों से आए थे, एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से दिशा में भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है, और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो। हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद नीलम जी।
0: मैं सबसे पहले आपसे, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति

0: का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगा वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी
1: नीलम जी, इस विषय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
0: जी,
1: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
0: जी।
1: भारत देश में समाज के
0: जी
1: किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सब रखते हैं, उसके बाद जो समाज के होता है शास्त्रार्थ नाम दिया
0: जी।
1: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, बोलते हैं कथा भी, संवाद भी, समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद और द्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
0: जी।
1: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है, उसके द्वारा उन्होंने व्यवस्था को उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो सम्पदा है इसका ह्रास करेगी?
2: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है पांडुलिपियों में, केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज भारतीय जीवन लिखा गया है और आज भी उनसे विस्तार हो रहा है। निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, जो कि या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज ब्राह्मी है, शारदा है, या मीडियम लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हम सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो है संग्रहित हुई हैं और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी
0: जी। तो इस तरह से AI सहायक है जी,
2: निश्चित रूप से
0: जी। मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब

0: शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या यह केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है? और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
1: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे,
0: जी
1: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो
0: जी
1: कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो,
0: जी
1: वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूं कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम 5 तो बैठते ही थे। लेकिन पंचायत में 5 के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं
0: जी।
1: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निसृत हुआ है
0: जी,
1: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
0: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
1: जी,
0: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को जी पल्लवित किया जा रहा था।
2: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है
0: जी।
2: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं
0: जी,
2: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है। लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है
0: जी,
2: उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था
0: जी।
2: तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को
0: जी,
2: तो एक स्पर्धा नहीं थी
0: जी,
2: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था
0: जी। यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं और इसमें मत भेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था जी। यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
2: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरा विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है, बहुत सुंदर पद्य है, जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: तो इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है वो बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सकें। तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़ें।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा, बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है।

0: उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल कभी विरोधी नहीं बनेंगे
1: जी।
0: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूँ AI टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्म राक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्म राक्षस को आप अपने वश में रखे
1: जी।
0: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए।
1: हाँ।
0: लेकिन ब्रह्म राक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा,
1: जी।
0: तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है
1: जी।
0: हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल
1: जी।
0: इसके साथ करना चाहिए।
1: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि BTech भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
1: जी।
0: BTech पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है
1: जी।
0: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है। वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। BTech AI और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन AI टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है
1: जी।
0: एक कार्य कोई IIT नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है
1: जी।
0: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया
1: जी।
0: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है
1: जी।
0: उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है BTech कार्यक्रम, जिसमें AI टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे
1: जी।
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है
1: जी। तो ये आने वाले कल की तैयारी है जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे
1: जी।
2: तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है
1: जी।
2: इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में

0: ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो है वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि ट्रांसमिट करना, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को, तो ये आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी, महत्वपूर्ण अवसर है और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा के बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है, आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा गहरी होती जाएगी।
0: जी,
1: बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है। यहाँ पर मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं, प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
2: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
1: जी,
2: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
1: जी,
2: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्यों वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
1: जी।
2: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद जिनको श्रुति कहा जाता है, वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं
1: जी।
2: और मंत्र क्या हैं, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है, छंद पादौ तु वेदस्य
1: जी,
2: छंद जो वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सब मंत्र याद रहे, उसका कारण ही है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
1: जी,
2: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से मंत्र हैं
1: जी,
2: ये सूक्तम कहा गया है, ये सूक्तम ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, लक्ष्मी और नारायण
1: जी।
2: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश
1: जी।
2: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनके ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्वव्रतये सितौ प्रजानां प्रलये तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी

0: या त्रिगुणात्मने नमः, यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तो शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो संपन्न होने के कारण ये सब करता है
1: जी।
0: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र है, तो ये जो है ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही रुद्र भगवान के जो है वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
1: जी।
0: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय हो रहते हैं और श्रवण भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी,
0: और ये फल भी देते हैं
1: जी। स्तुति का माध्यम है ये।
0: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
1: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की
0: जी,
1: और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
0: जी
1: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उन जीवन यापन का हिस्सा है।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
1: जी।
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है, विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए। देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
1: जी,
2: यह इतिहास का भाग रहा है, इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं, इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है, और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है, आनो भद्रा कृतोयन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
1: जी।
2: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
1: जी।
2: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमें भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं, हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
1: जी।
2: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भय है लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध

0: जो विचार जो
1: जी
0: विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
1: जी, और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है, और हम वो संस्कृति हैं जहाँ हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति विश्व कल्याण की कामना है। जी, यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना, उसमें ये शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनिकाना, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
2: जी, निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है, वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है
1: जी।
2: और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतनी अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति, जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परम्परा जो है वो भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है, तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं, और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं, और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है, उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है, मार्कंडेय पुराण का एक अंग है, और तैत्तिरीय आरण्यक भी यह प्राप्त होता

0: दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं
1: जी
0: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है।
1: जी, और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है। हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं। हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है। कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो हैं, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं अपने जीवन का ऐसा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचना बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी दें? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें। हम चाहते हैं कि वो जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सबके साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है, और भी भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग क्या है? ये एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है,
1: जी।
2: सूत्र दिए हुए हैं, सूक्त दिए हुए हैं, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
1: जी,
2: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
1: जी,
2: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है, और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
1: जी।
2: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
1: जी।
2: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो

0: एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है।
1: जी
0: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए, ये भाषा है संस्कृत।
1: जी
0: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा। संसार भी जुड़ रहा है क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का ज्ञान है,
1: जी
0: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है जिसमें मानव सके और देव सके,
1: जी
0: तो बिना संस्कृत वो संभव नहीं है।
1: जी
0: क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में वो व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी।
1: जी यानी
0: इसलिए
1: संस्कृत केवल एक
0: संस्कृत
1: भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं। जी प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो से सहयोग कर सकते हैं इसमें।
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा।
1: जी
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करनी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
1: जी
2: वो संपूर्ण विकसित भारत है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है।
1: जी
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है। सुख का मूल क्या है लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है। मनी के मूल क्या है? जॉब है। जॉब के लिए क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम के क्या करना है? तैयारी करनी है।
1: जी
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है? जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उस महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः।
1: जी
2: सुख का मूल धर्म है। समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है,
1: जी
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ चाहिए लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा।
1: जी
2: तो आज दुनिया में ये मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा।
1: जी
2: तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है।
1: जी
2: तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं। आज हमें आध्यात्मिकता को हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है।
1: जी
2: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व तो है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था।
1: जी
2: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो,
1: जी
2: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करें तभी विकसित भारत होगा।
1: जी
2: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक,
1: जी
2: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थान पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान पर भी होगी।
1: जी यानी सब कुछ साथ कर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का, और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी, और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की।

0: आधुनिक चुनौतियों की लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: हमारे साथ कार्यक्रम में श्री प्रियशंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाज से सेवानिवृत्त हुए और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: नीलम जी शुक्रिया।
0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: कभी हृदय से धन्यवाद।
0: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें, संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन,

0: धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकर में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की से बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले दो दो गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2036 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार खिताब है। अर्जेंटीना के लिए जहां मेसी सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर 19 वर्षीय लामिन यामल स्पेन के आक्रामक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जेकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले भारतीय टीम
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering the protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to the media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Mohitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members represented

107.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, यानी गीता दत्त की आवाज़ के साथ।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहेब बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म की रीमेक थी जो आधारित थी विमल मित्रा के उपन्यास पर। और इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म का संगीत भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है आशा जी, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म CID से।

फिल्म का नाम सीआईडी और आवाज़ें थी शमशाद बेगम, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की। संगीत उपिन अय्यर साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1956 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने और निर्मित किया था गुरुदत्त ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, शकीरा, जॉनी वॉकर, के एन सिंह और वहीदा रहमान ने। इस फिल्म में देव साहब की भूमिका एक पुलिस इंस्पेक्टर की थी जो एक हत्या के मामले की जांच करता है। और अगला गीत आप तक, जगजीत कौर की आवाज़ में, फिल्म शगुन से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के

का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। ये फिल्म आई थी 1960 में और फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने, निर्देशन किया था एसयू सनी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनेस और कुमकुम ने। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही थी और 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अगला गीत लगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़।

मदर इंडिया फिल्म से सुना आपने ये गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में, संगीत नौशाद साहब का था और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था महबूब खान ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने। ये फिल्म महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक थी और फिल्म मदर इंडिया एक गरीब महिला राधा की कहानी है जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए, जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और भारतीय नारी की जो एक सशक्त परिभाषा है उसे स्थापित करती है। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट चारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शंकर राइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने

0: के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House NXE. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania yesterday. The visit to the three European countries

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और

15 सेकंड शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज के साथ।

वैसे बताने वाले तो बहुत कुछ बता गए हैं, लेकिन सच कहूं, मोहब्बत को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे लगता है कि मोहब्बत के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये इंतज़ार है, किसी के लिए यादें हैं, तो किसी के लिए साथ चलना मोहब्बत कहा जा सकता है। खैर, मोहब्बत की परिभाषाएं तो चलती रहेंगी और बातों का यह सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है अगला गीत सुनने का। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

आपके दिल की धुन इस वक्त क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरा दिल तो एक ख्वाब बुनना चाहता है। चलेंगे आप मेरे साथ अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसे निखर के आता है कि तिविसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कहने और सुनने की जो कश्मकश होती है ना, यही हमें इंसान बनाती है। और ये कश्मकश जब मोहब्बत से मिल जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि इस पूरी कायनात में सबसे मुश्किल काम शायद यही है, दिल की बात को सही वक्त पर, सही इंसान पर, सही लफ्जों में कह पाना। कई बार तो पूरी जिंदगी गुजार दी जाती है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ये सही इंसान है, क्या ये सही वक्त है, क्या ये सही लम्हा है। और इसी उधेड़ बुन में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो इंसान शायद हमारी ज़िंदगी से हमसे छूट भी जाता है। और फिर हम कई बार जब हम सोचते हैं तो फिर लगता है कि ये रंग और नूर की बारात आखिर पेश किसे की जाए। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह। वाकई साहिर साहब को उनके शब्द ही साहिर बनाते हैं। पता है जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, कामयाबी होती है, नाम होता है, महफिलें होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खलीपन होता है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी चमक भर नहीं पाती।

साहिर साहब ने जो इस गीत में कहा है वो आज भी उतना ही सच है। हम अक्सर अपनी खुशियों की बारात सजाते हैं, लेकिन उस दासी का क्या जो बार बार हमारी यादों से, हमारी स्मृतियों से हमें घेरती है। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हमसफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले दो गोदामों की उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चरादेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22

0: राजस्व सर्कल और उन 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि MV बारिमा नौका राजधानी जॉर्जटाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members ended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constant discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Antar. Recalling the rich contribution of Bengal to the nation in every way, including independence movement, religion, literature, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the then government of West Bengal has ruined the legacy of the Bengal. He stressed that Bharatiya Janata Party will make Bengal great again. Amit Shah yesterday laid the foundation stone virtually of Amul Bengal Dairies curd-making facility at Sankrail in Howrah district in West Bengal from the Biswas

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम है हमराही। चलिए आगाज करते हैं हमराही का। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन ये लब खामोश रह जाते हैं। कुछ मुलाकातें बस पल की होती हैं लेकिन उनकी यादें पूरी उम्र का सहारा बन जाती हैं। किसी का साथ, किसी की मुस्कान, उसकी मौजूदगी, यही तो वो एहसास है जिसे हम अपने दिल में संजोकर हमेशा रखना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है, आया है और समय ठहर गया है, उसके साथ बिताया हर लम्हा खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है, तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे गीत के साथ, उसी मासूम एहसास के साथ, उसी अनमोल पल के नाम के साथ। चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। फिल्म है वो कौन थी, आवाज है लता मंगेशकर की।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जब बात इश्क की, मोहब्बत की और प्यार की होती है, तब ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा फूल होते हैं। जी हाँ, फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाते, वे दिल की उन भावनाओं को भी साथ समेट लाते हैं जिन्हें अक्सर शब्द हम कह नहीं पाते। जब किसी अपने के लिए फूल भेजे जाते हैं तो उसमें प्यार, अपनापन, इंतज़ार तीनों महकते हैं। आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये सदाबहार गीत।

हमराही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी खुशियां दे देती है जिसका इंतजार बरसों से होता है। जब दिल अपनी सबसे प्यारी मंजिल के करीब पहुंच जाए तो हर पल किसी जश्न से कम नहीं लगता। ऐसे ही मोहब्बत की खुशी और अपना पन लिए पेश है ये गीत।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हर प्यार की अपनी एक कहानी होती है, कभी फूलों की तरह महकती तो कभी परिंदों की तरह खुलकर गुनगुनाती। कुछ किस्से तो इतने मासूम होते हैं कि वे पीढ़ियों तक मुस्कुराहट बनकर जिंदा रहते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यार की एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी खूबसूरत दास्तां बयां करता हुआ एक ऐसा ही गीत, एक था गुल और एक थी बुलबुल।

हम प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

वो नहीं भूलता कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता जहाँ जाऊं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता मैं जहाँ जाऊं।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार।

जब दिल सच्ची नीयत से दुआ करता है तो हर अर्जी उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। विश्वास, प्रेम और उम्मीद हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दिल गहराइयों से निकलकर प्रार्थना और खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता है।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। भक्ति वो शक्ति है जो मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर देती है। जब भी हम श्रद्धा के साथ ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत और एक नया कदम, एक नया उत्साह बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इसमें 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूँ सुरभि, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अरुणिमा। देखा जाए तो ये जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी खुशी दे जाती है तो कभी चुनौती, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए उम्मीद, हौसले और सकारात्मक सोच से भर देने वाला गीत सुनते हैं।

जीवन की असली खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हमारी मुस्कान किसी और के चेहरे की वजह बन जाए या हम किसी के काम आ जाए। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लें, वही जीवन सच्ची मायनों में सार्थक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इंसानियत और अपनत्व का संदेश देता हुआ ये गीत।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफ़र यहीं तक। 5:10 पर भोर सुहानी में होगी हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है।

स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं होता। एक सच्चा साथ, एक भरोसे भरा हाथ और थोड़ी सी संवेदना अगर मिल जाए तो किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम और आप एक दूसरे का सहारा बने। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उम्मीद, अपनापन और हौसले का संदेश देते हुए इस भावपूर्ण गीत को सुनकर।

भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं छोड़ते। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है और हर नई सुबह एक नई शुरुआत का संदेश देती है। तो चलिए आत्मविश्वास को थाम कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को देने वाला ये गीत हम और आप सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिसमें बीते हर लम्हे खास बन जाते हैं। खुशियां जब अचानक दस्तक देने लगती हैं तो दिल मुस्कान से भर उठता है, नई उम्मीदें जागती हैं, बहुत ही खूबसूरत एहसास जीवन में आ जाते हैं। तो चलिए खूबसूरत एहसास, नई उम्मीदों और जीवन की मधुरता को समेटे ये गीत सुनते हैं।